0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन। स्मॉल
1: स्मॉल,
2: अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग।
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन। स्मॉल
1: आप पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
3: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank mein khollo.
3: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account. Business, Maxima business, privilege, RDM, there's nothing small about them.
3: Okay.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट अस
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
5: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arre, Ujjivan Small Finance Bank ma kholo.
5: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
5: Okay.
3: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल,
2: अब पूरी पिक्चर देख लो।
3: लोन ऑप्शंस बिग,
4: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
3: ब्रांच नेटवर्क बिग।
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता।
3: और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
5: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: यार लोन भूल गया मैरी।
7: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
7: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
6: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: Yaar, loan bhool gaya. Maddy? Suggest a good bank, na?
1: Ujjivan Small Finance Bank.
3: Small Finance Bank?
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
4: There's nothing small about it.
1: Ujjivan, nothing small about us.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक.
1: स्मॉल. प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी. एवरीथिंग. देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके.
1: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: Yaar, loan bhool gaya. Maddie? So just a good bank, na?
1: Ujjivan Small Finance Bank.
3: Small Finance Bank?
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
4: There's nothing small about it.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
0: Guys, mera teesra store. Ab expansion ke liye na ek bank chahiye. Any suggestions? Ujjivan small finance bank. Small?
1: Small? Ab puri picture dekh lo. Loan options, big. Savings or FDP interest? Big. Branch network? Big. Agar small hota, to main SAD mein hota. Ujjivan, nothing small about us.

0: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक,
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए. देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग, द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
0: Guys, mera teesra store. Ab expansion ke liye na ek bank chahiye. Any suggestions? Ujjivan small finance bank. Small?
1: Small? Ab puri picture dekh lo. Loan options, big. Savings or FDP interest, big. Branch network, big. Agar small hota, to main side mein hota. Ujjivan, nothing small about us.

0: 25 years ago, Prime Minister Narendra Modi took charge as the Gujarat's then Chief Minister. What followed later was the rapid industrial expansion, and pharmaceuticals became one of the state's most powerful growth engines. Today, Gujarat's healthcare story is no longer limited to making only medicines. It has become about pharma, bulk drugs, biotechnology, medical devices, and specialized hospitals. Gujarat today is building something much bigger, an entire healthcare ecosystem.
1: India is the largest provider of generic drugs globally and is renowned for its affordable vaccines and high-quality medicines. Over the years, the Indian pharmaceutical industry has evolved into a vibrant sector, currently the third largest in the world by volume. If one looks at India's pharmaceutical growth story, one name comes to the top, and that is Gujarat. From bustling industrial zones to world-class manufacturing plants, Gujarat has earned a reputation as India's pharmaceutical powerhouse. Gujarat is home to more than 3,300 pharmaceutical manufacturing units spread across major industrial clusters like Ahmedabad, Vadodara, Vapi, Bharuch and Ankleshwar. Historical industry data puts Gujarat's contribution at around 30-35% of India's pharma sector turnover and around 28% of pharmaceutical exports. But the strength of Gujarat's pharma sector goes beyond the number of factories. Over the years, an entire ecosystem has grown around them, from suppliers and laboratories to packaging, logistics and skilled manpower. That ecosystem has helped companies manufacture at scale and reach international markets. And one such company is Relax Biotech. Relax Biotech began operations in Vadodara, Gujarat in 2015. Today, it manufactures around 50 crore or 500 million medicines every year. The company exports to several African countries and records annual revenue of more than 75 crore rupees or $7.88 million. Its growth reflects the wider ecosystem that has developed around Gujarat's pharmaceutical industry.
2: अपने 25 साल की बात करें तो जर्नी की बात करें तो जो मार्केट भारत में था वो विदेश का भी था और भारत का भी था तो दोनों को कैटर करने की क्षमता जो कोई रखता था तो वो भारत ही था और उसमें जो बढ़ोतरी हुई उसका मेन रीजन ये है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फिर लाइसेंसिंग फैसिलिटी और स्किल्ड मेन पावर और लेबर की जो अपनी पूर्तता है वो समय समय पे हमें मिलती रहती है। आप बड़ौदा की बात करें या गुजरात की बात करें तो बड़ौदा में गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने पहले दिन से फोकस किया था और इंडस्ट्री को उसके कारण जो भी सपोर्ट मिला है तो वो अपने को ये बेनिफिट आज की तारीख में भी मिल रहा है।
1: गुजरात हेल्थ केयर स्टोरी इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट व्हाट कम्स आउट ऑफ अ फैक्ट्री। द ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंगली विजिबल इनसाइड हॉस्पिटल्स। Across cities such as Ahmedabad, Vadodara and Surat, hospitals have expanded their tech infrastructure and capabilities, from basic healthcare to advanced diagnostics, specialized surgery and technology-driven treatment. That means making fewer journeys outside Gujarat for medical treatment.
3: आप 25 साल पहले का 20-25 साल पहले के आप स्टोरी देखोगे तो हेल्थकेयर सिस्टम की कि पेशेंट को ट्रीटमेंट एक ही जगह पे नहीं मिलती थी। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस उनको सिलेक्ट करना पड़ता था। अगर उनको हार्ट सर्जरी भी करनी थी या फिर कोई बड़ा सर्जरी का कोई बदलाव था तो उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था। जो अभी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप AI बेस्ड और रोबोटिक सर्जरी और कैप्सूल एंडोस्कोपी तक की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गई है। अब एक ही प्लेस पे आपको ट्रांसप्लांट सर्जरी भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक ही जगह पे एक ही सिटी विदिन अ सिटी आपको हर फैसिलिटी मिल रही है। पेशेंट को एक ही जगह पे सब इन्वेस्टिगेशंस और सब उसका डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हो गया है।
1: One doctor who has witnessed this transformation firsthand is Dr. Tarang Sharma. Dr. Sharma has been treating patients since 2008, giving him nearly two decades of experience in the field. What was once a system with limited specialized options is now a much wider network of hospitals, diagnostics, and treatment facilities. For doctors, it has meant more technology, more specialized capabilities, and increasingly, the ability to treat patients closer to where they live.
4: पहले का जो एरा था और अभी का जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आए हुए हैं. लाइक पहले को एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक जाना पड़ता था. अब क्या है कि अपने ही सेंटर में, अपने ही जिले में या डिस्ट्रिक्ट में या फिर तालुका प्लेसेस पे भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है. पहले उतनी मेडिकल कॉलेज नहीं थी, पहले इतने पीएचसी सीएससी सेंटर नहीं थे. आज आप देखें तो वो पीएचसी सीएससी सेंटर पे भी अच्छे से अच्छी सारवार ले सकते हैं. जो अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी अपना रही है. तो पेशेंट के लिए बहुत सारा बेनिफिट हुआ है कि वो अपने नियर बाय एरिया में ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं. बात करें एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट ऑफ एचआर मैन पावर, वो सब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ किया हुआ है. हम बात करें अब के एरा में टेलीमेडिसिन, जो हमने कोविड में भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि हम यहाँ से लेके बड़ौदा, हम अभी बड़ौदा में है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सभी जगह पे टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते थे.
1: द ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो विजिबल इनसाइड द ऑपरेटिंग रूम. गुजरात इज रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर विद रोबोटिक सर्जरीज, इंश्योरिंग ग्रेटर प्रिसिजन, क्विकर रिकवरी एंड फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस. Cath labs have also enabled advanced cardiac interventions. Once limited to a few hospitals, these advanced procedures are now accessible to the public. Gujarat is now looking beyond conventional healthcare setup. The next opportunity lies at the intersection of pharmaceuticals, biotechnology and technology. Artificial intelligence, robotics, medical devices, advanced diagnostics, digital health, research. The ambition is to move from manufacturing healthcare products to developing technologies that can shape healthcare itself. The focus is increasingly on biotechnology, medical devices, innovation and research alongside the state's existing pharmaceutical base. The challenge now is to bring these pieces together and create a deeper ecosystem for healthcare innovation.
2: इसका सबसे जरूरी जो एस्पेक्ट है वो है कि स्किल लेबर चाहिए. तो वो स्किल लेबर प्रोवाइड तो बड़ौदा के अंदर ही चार बड़ी यूनिवर्सिटी आज की तारीख में है और जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल के लिए जो भी बीफार्म बीफार्म के कोर्सेस है वो चलते हैं. और हमें यहाँ से लोकली भी एजुकेशन के हिसाब से मेन पावर मिल रहा है. तो ये एक सपोर्टिंग सबसे बड़ा सपोर्ट है. साथ में गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल जोन में जो भी बेसिक सुविधा है वो हमें सिंगल विंडो से देने को ट्राई कर रही है, जिसके कारण गुजरात की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी उसने अपने एक्सपेंशन को भी किया. और दूसरी जो बाहर की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है या गुजरात के बाहर की है, वो भी कंपनी इधर आके यहाँ पर अपना यूनिट अलग से करके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कर रही है.

0: For 25 years, Gujarat built scale, first in the manufacturing of medicines, then in infrastructure, hospitals and specialized care. Now, the ambition is to build what comes next, an ecosystem where medicines, medical devices, biotech, data and technology all come together. The test will be whether Gujarat can turn that scale into innovation and make healthcare not just more advanced, but more accessible and affordable for one and all.
1: Because the story may not just be about what the state makes, but about what it can invent, develop, and take to the world. Quick Video journalist Siddhesh Sudhisha reporting from Vadodara, Gujarat for Beyond World is One.
2: यार लोन भूल गया मैरी
3: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
5: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
6: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
7: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WeOn brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WeOn. World is One.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
2: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
1: ब्रांच नेटवर्क बिग,

0: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
1: द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग, द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
2: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस?
1: जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
0: स्मॉल
2: स्मॉल,
3: अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances, power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
2: ब्रांच नेटवर्क बिग.
1: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
4: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances, power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.
5: The architecture of war is changing. Geography is no longer a shield. The battlefield now stretches from sea to space. Meet the veterans, industry stalwarts, and innovators.
0: Maddy, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma khollo.
0: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account, business Maxima business privilege RD. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.